के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं। तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है। दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लोबान चल रहा है।

में पकते हैं तो झुमकों की तरह बोलने लगते हैं कोहिस्तानों पर, बेलें गिरती हैं छतों से, मौसमी पेड़ है मौसम में उगा करता।

0: नाशिक मध्ये स्वतःचं घर, पण लोकेशन, स्पेस आणि लाईफस्टाईल सगळं एका ठिकाणी मिळेल का?
1: अरे मिळेल ना, कारण आता आलंय जय डेव्हलपर्सच साई पार्क. घराचं स्वप्न आता होणार पूर्ण. साई पार्क सोबत आयुष्य होणार सुंदर.
0: विहित गावच्या प्राईम लोकेशन मध्ये रेडी पोझिशन 2 BHK,
1: पाथर्डी देवळाली लिंक रोड ची उत्तम कनेक्टिव्हिटी.
0: तेव्हा आजच विजिट करा साई पार्क नाशिक. संपर्क 7378787890.
2: रातभर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव तापा. मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े. मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले. अपनी इन आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी. तुमने भी पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी. रात भर सर्द हवा चलती रही.

0: पर जो भी मिला उगते बदन पर हमको काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे। रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने, रात भर सर्द हवा चलती रही और रात भर हमने अलाव तापा।
1: रजतम लंबोदरम प्रियम अत्यंत पावनम,
2: अक्षयम लभते पुण्यम दारिद्र्यम नैव जायते।
1: बाप्पाला चांदी अति प्रिय आहे
2: आणि म्हणून ती शुद्ध हवी।
1: बाप्पासाठी चांदीचे पूजा साहित्य
2: आणि शोभिवंत दागिन्यांसाठी
1: विश्वास नाशिककरांचा।
2: अडावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा कॉर्नर, नासिक।

डाबर आमला तेल बालों को घना व काला बनाता है। इससे आपके बाल रेशम जैसे मुलायम हो जाते हैं और सर को ठंडक पहुंचती है। हमेशा इस्तेमाल कीजिए डाबर आमला तेल।

एक नजर ने तेरी मार दिया, एक अधान ने तेरी लूट लिया, किस खता का बदला लिया ये बता, न सता ये बता।

फिर मुझे वो जलवा दिखा, फिर से एक दफा मुस्कुरा, फिर से मुझ पे बिजली गिरा। अब तो आ अभी जा, अब तो आ अभी जा अभी जा।

0: मम्मी
1: किससे कह रही हो?
0: आपसे?
1: मुझसे? कौन हो तुम? ये घर तुम्हारा है? ये आपको क्या हो गया मम्मी? आपकी तबीयत कैसी है?
2: नजर नहीं।

0: आशिकों के सरदार।
1: तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, के मेरा रखी तेरे करीब अरे फूटे नसीब। आपकी तारीफ
2: एक आशिक गरीब